ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी पुलिस ने टोक्यो के शिमाल में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक खानदान पर जानलेवा हमले के सिलसिले में 20 के बेटे के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि कम अज कम एक और शख्स ने मुश्तबा अफराद को हिदायत दी थी। जुमेरात को तोचिगी प्रीफेक्चर के कामी नोकावा कस्बे में मुतअद्दिद अफराद एक घर में घुस गए। एक 69 साल खातून को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इसके दो बालिग बेटे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो फार्म पर काम करके घर वापस आए। पुलिस ने इतवार को डकैती और कत्ल के इल्जाम में 25 साल थाकेमाई म्यू को गिरफ्तार कर लिया। वो टोक्यो के करीब कानागावा प्रीफेक्चर से है। इसे योकोहामा शहर के एक कारोबारी होटल से हिरासत में लिया गया। वो 7 माह की बेटी के साथ एक कमरे में थी। कबल अजी इसी रोज उसके शौहर को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 28 साल थाकेमाई काइतो बैरून मुल्क सफर करने ही वाला था। पुलिस का ख्याल है कि इस केस में एक गुमनाम और वक्ती मुजरिम ग्रोह मुलविस है। ऐसे ग्रोह हमलावरों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कानागावा प्रीफेक्चर से हाई स्कूल के 4 16 साल तालबे इल्मों को डकैती और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। ख्याल किया जाता है कि वो हमलावर हैं। हुकाम का ख्याल है कि इतवार को गिरफ्तार किए गए जोड़े ने तालबे इल्मों को अहकाम दिए थे। जापान की मईशत पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर तश्वीश में इजाफे ने मुल्क की तवील मुद्दती कलीदी शराय सूद को 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। जापानी हकूमत के 10 साल बॉन्ड्स का मुनाफा पीर के रोज 2.8% तक पहुंच गया। लेन देन से मुंसलिक कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आखिरी बार ये सतह पर मई 1997 में पहुंचा था। सरमायाकारों को तश्वीश है कि तेल की कीमतों में इजाफा तिजारती खसारे का बाइस बन सकता है। टोक्यो के मगरब में वाकया ओकुथामा कस्बे में पहाड़ी रास्ते पर चहलकदमी करने वाला एक शख्स रीछ के हमले से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज लगभग दोपहर के वक्त करीबी साकाई इलाके में वाकये की इतला देने वाली कॉल मौसूल हुई। इस शख्स को बजाहिर चेहरे और बाजुओं पर शदीद चोटें आईं। उसने दीगर अफराद को बताया कि उस पर रीछ ने हमला किया है।

0: जाता है, जैसे प्यारा यानी कवाई, इसके साथ देस ने लगाकर कवाई देस ने कहा जाए तो ये ज़्यादा शायस्ता होगा। आज के मकालमे में ताम ने एक और तावीज़ के लिए कहा था कोरेमो ई देस ने, यानी ये भी अच्छा है, इसमें ई यानी अच्छा भी ई इसमें सिफत है।
1: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: कवाई, कवाई देस ने, कवाई ओमामोरी देस ने।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए जिसमें तहाइफ की दुकान में मौजूद एक टी शर्ट के बारे में ग्राहक अपना तासुर बयान कर रहा है।
3: मीते कोनो टी शर्ट्स
4: ओमोशिरोई देस ने।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: मीते कोनो टी शर्ट्स,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: मीते, ये फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल है, जो किसी से कुछ करने के लिए कहने का बेतकल्लुफाना अंदाज है। कोनो के मायनी है ये, और टी शर्ट्स दरअसल टी शर्ट का जापानी तलफ्फुज है।
4: ओमोशिरोई देस ने,
1: दिलचस्प है ना।
0: इस जुमले में भी एक ई इसमें सिफत ओमोशिरोई यानी दिलचस्प इस्तेमाल हुआ है, और ने अपनी बात की तायीद चाहने का एक अंदाज है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: ओमोशिरोई, ओमोशिरोई देस ने।
0: और अब अपना तासुर बताने की मशक। फर्ज कीजिए आप किसी बेकरी में हैं जो मज़ेदार डबल रोटी के लिए मशहूर है। वहाँ आप तवक्को से बड़ी डबल रोटी देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरानी के इस तासुर के लिए आप कहेंगे इतनी बड़ी, तो बड़ी को कहते हैं
2: ओकी, ओकी।
0: सामीन कोशिश कीजिए।
3: ओकी देस ने, ओकी देस ने।
0: अब तसव्वुर करें कि आप तहाइफ की किसी दुकान में हैं और एक खूबसूरत बटुआ देखते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपकी तवक्को से भी ज़्यादा है। आप अपनी हैरानी का इजहार यूं करेंगे, बहुत महंगा है। महंगा की जापानी है
2: थकाई, थकाई।
3: थकाई देस ने, थकाई देस ने।
1: जी सामीन, उम्मीद है आपने तलफ्फुज़ की दुरुस्त अदायगी कर ली होगी।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें। कोरे ओ कुदासाई, यानी ये दीजिए। इसमें कुदासाई के मायने हैं दीजिए। जब आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदना चाहें या रेस्तरां में किसी चीज़ का ऑर्डर देना चाहें, तो सिर्फ उस चीज़ की जानिब इशारा करते हुए कहें कोरे ओ कुदासाई।
1: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुने।
5: कोरे ओ कुदासाई,
6: कोरे ओ कुदासाई,
7: कोरे ओ कुदासाई।
1: अब आप इसे दोहराइए।
2: कोरे ओ कुदासाई।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम तावीज़ों के बारे में अपने तासुरात का इजहार करती है।
8: これ可愛いお守りですね。
9: 本当、可愛い。
8: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
11: 縁結び、恋人ができるお守り。
8: じゃあ、これをください。
1: अब मियाँ का सफरी हिदायतनामा। आज के मकालमे का मकाम सेंसोजी मंदिर है। इस मुनासबत से जापान के मंदिरों और इबादत गाहों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: जापान में बड़े शहरों से पहाड़ों की घाटियों तक हर इलाके में इबादत गाहें और मंदिर पाए जाते हैं। इबादत गाहों या माबदों में कदीम जमाने से शिंतो मत देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि मंदिरों का ताल्लुक कोई 1500 साल कबल दूसरे एशियाई ममालिक के रास्ते से आने वाले मजहब बुद्ध मत से है।
1: अक्सर इबादत गाहें और मंदिर सियाहती मकामात के तौर पर भी मशहूर हैं।
0: जी हाँ, इसकी एक वजह सदियों का वो हुनर है जो इनकी इमारात महात्मा बुद्ध के मुजस्मों और दीगर आरायशी अशिया से मंसूब है, और यकीनन इनके मुलहका बागात भी नहायत शानदार हैं।
1: टोक्यो में मेजी जिंगू इबादत गाह और सेंसोजी मंदिर मकबूल सियाहती मकामात हैं।
0: और मगरबी जापान का नारा प्रीफेक्चर महात्मा बुद्ध के देवहकल मुजस्मे के हामिल तो दाई जी मंदिर के लिए जाना जाता है। एक और मशहूर मुकाम ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے جو دیومالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے۔ مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے علی الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا، اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सकू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांग की है कि वो युद्ध समाप्त करने से जुड़ी अमरीकी शर्तें मान ले ताकि कोई समझौता किया जा सके। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान के लिए समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, वरना वो नहीं बचेंगे। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने ट्रंप के एक फोन कॉल के हवाले से कहा, हम समझौता करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी सारी शर्तें नहीं मानी हैं, उन्हें वो माननी होंगी अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान सरकार की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमेरिका ने ईरान के नवीनतम प्रस्तावों के जवाब में 5 शर्तें रखी हैं। एजेंसी के अनुसार ईरान ने सभी मोर्चों पर, विशेष रूप से लेबनान में, युद्ध समाप्त करने, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियों को मुक्त करने, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की है। मीडिया एजेंसी के अनुसार वॉशिंगटन ने 5 शर्तें रखी थीं, जिनमें मुआवजा न देने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त न करने, अमरीका को ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपने, ईरान की केवल एक परमाणु सुविधा को सक्रिय रहने देने और युद्ध समाप्ति शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले के कारण एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई है। अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आग से संयंत्र की महत्वपूर्ण प्रणालियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार रेडियोधर्मी सुरक्षा स्तरों में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी सीमा की ओर से 3 ड्रोन देश में घुसे, जिनमें से 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, लेकिन तीसरा ड्रोन जनरेटर से जा टकराया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा यूएई पर कई हमले किए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने घोषणा की थी कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। रविवार को DRC के पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में इबोला के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद ये घोषणा की गई। अफ्रीकी संघ की जन स्वास्थ्य एजेंसी ने 87 संदिग्ध मौतों की सूचना दी है। WHO के अनुसार DRC से युगांडा गए लोगों में से 2 में संक्रमण का पता चला है। उसका ये भी कहना है कि शुरुआती नमूनों में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए ये प्रकोप मौजूदा अनुमान से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है, जिससे इस प्रकोप के स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर फैलने का गंभीर खतरा है। WHO का कहना है कि अभी ये प्रकोप महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इटूरी प्रांत कई अहम खनिज खदानों वाले उस क्षेत्र के निकट है जिस पर सरकार विरोधी ताकतों का प्रभावी नियंत्रण है। WHO ने प्रकोप का जायजा लेने और प्रतिक्रिया प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में जापान पुलिस ने 20 से अधिक उम्र के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि कम से कम एक और व्यक्ति ने संदिग्धों को निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को तोचिगी प्रीफेक्चर के खामिनोखावा नगर में कई लोगों ने एक मकान में घुसपैठ कर एक 69 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या की और उसके 2 वयस्क बेटों को घायल कर दिया जो खेत में काम करके घर लौटे थे। पुलिस ने रविवार को 25 वर्षीय ताकेमाए मियू को डकैती और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया जो टोक्यो के निकट खानागावा प्रीफेक्चर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे योकोहामा शहर स्थित एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया जहां वो अपनी 7 माह की बेटी के साथ ठहरी थी। इससे पहले रविवार को ही पुलिस ने इस महिला के 28 वर्षीय पति ताकेमाए काइतो को टोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था जहां से वो विदेश जाने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक अज्ञात और अस्थायी आपराधिक गिरोह का हाथ है। इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों की भर्ती करते हैं। इस मामले में खानागावा प्रीफेक्चर के 4 छात्रों को डकैती और हत्या के संदेह में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हाईस्कूल में पढ़ने वाले इन 16 वर्षीय छात्रों ने हमला किया था। अधिकारियों का मानना है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए दंपति ने इन छात्रों को निर्देश दिए थे। जापान की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण देश की मानक दीर्घकालिक ब्याज दर 29 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को जापान के 10 वर्षीय सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर 2.8% तक पहुँच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि इससे पहले ये स्तर मई 1997 में देखा गया था। निवेशकों को चिंता है कि तेल की उच्च कीमतों के कारण व्यापार घाटा हो सकता है। पश्चिमी टोक्यो के ओकुतामा नगर में पहाड़ी रास्ते पर चलते समय एक व्यक्ति भालू के हमले में घायल हो गया है। पुलिस का कहना है कि दमकल कर्मियों को रविवार दोपहर करीब 12 बजे नगर के साकाई क्षेत्र में हुए इस हमले की सूचना मिली। व्यक्ति ने अन्य लोगों को बताया कि उस पर एक भालू ने हमला किया है। कथित तौर पर व्यक्ति के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। खबरों के अनुसार अस्पताल ले जाते समय वो होश में था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नगर अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति अकेला जा रहा था कि तभी उसके सामने भालू आ गया। टोक्यो महानगर सरकार द्वारा संकलित भालू नक्शे के अनुसार अप्रैल से ओकुतामा नगर में 7 जगहों पर भालू देखे गए हैं, जिनमें से एक जगह साकाई क्षेत्र है जहां 4 मई को भालू देखा गया। खबरों के मुताबिक ये हमला आबादी वाले इलाके से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं।

रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।